0: Sir, nagira संदेश यौन हिंसा से बचा जाए और सबकी बचावा जाए। यौन हिंसा सामाजिक अपराध हुए। ऐसी हिंसा पड़ोसी, हित दोस्त और नातेदार से भी हो सकत है। अभिभावक लोग अपने लड़के बच्चन के व्यवहार पे ध्यान देवा जाए। उन लोगन के चाल चलन बानी व्यवहार में अस्वाभाविक परिवर्तन आई सकत है। ऐसन हुए पे तुरंत उन लोगन से बातचीत करा जाए। बच्चा लोगन के कौन समस्या भय पे मन मिले वाला साथी लोगन से अथवा अभिभावक लोगन से बात करावा जाए।
1: अनुरोध आग लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय, राप्ती उपत्यका, देवखुरी, नेपाल।
2: ओहो भाई, कुखुरालाई दाना हाल्दै हुनुदो रहेछ त।
3: हो दाई, कुखुरालाई रोग नलागोस् भनेर यो औषधि पनि मिसाउँदैछु।
2: खै के औषधि रहेछ? ला, यो त प्रतिजैविक औषधि यानि कि एन्टिबायोटिक्स पो रहेछ। रोग नलागोस् भनेर जथाभावी यस्ता एन्टिबायोटिक्स औषधि खुवाउनु हुन्छ त?
3: यसरी स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि खुवाएका पशु पन्छीको मासु खाँदा मानव शरीरलाई नै हानि पुर्याउँछ। यी औषधि त रोगको संक्रमण भएपछि मात्र दिने हो। यसरी जथाभावी एन्टिबायोटिक्स औषधि खुवाइएका पशु पन्छीका मासु खाँदा ती औषधिले बिस्तारै काम गर्न छोड्छन् र भोलिका दिनमा मानिसलाई कुनै पनि संक्रमण सञ्चो नभएर अकालमै मृत्यु हुन्छ भाइ।
4: ठिक भन्नुभयो दाई, मेरा आँखा खोलिदिनु भयो। अबदेखि मेरा पशु पन्छीलाई पशु चिकित्सकको सल्लाह बिना यसरी जथाभावी औषधि खुवाउँदिन।
3: पशु चिकित्सक वा पशु स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र

घर छोड़ी गाँव घूमन जानून बाघ भालू गैंडा हाथी चितुआ पसे पछि धन जन को क्षति हुन्छ चुप।

0: फागुनदेखि वैशाखसम्म आगलागी बढ़ी हुन सक्छ। आगोको सही र सुरक्षित प्रयोग नहुँदा जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्छ।
1: आगोको प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान पुर्याऊ। सलाई, लाइटर, मट्टीतेल जस्ता ज्वलनशील वस्तु बाल बालिकाले भेट्ने ठाउँमा नराखौं। खाना पकाउने ग्यास सुरक्षित राखौं।
0: आफ्नो टोल छिमेकमा आगलागी सम्बन्धी जनचेतना जगाऊ। क्षति घटाउन स्थानीय स्वयंसेवक टोलीको गठन गरौं।
1: गाउँघर तथा शहरमा समेत सम्भव भएसम्म पोखरी निर्माण गरौं। पानीका स्रोतलाई व्यवस्थित गरौं। समुदायसँग सहकार्य गरौं।
0: खाना पकाइसकेपछि आगो राम्रोसँग निभाऊ। ग्यासको प्रयोग गर्नेहरूले चुलो, ग्यास रेगुलेटर तथा लाइटरको नियमित रूपमा निरीक्षण गरौं।
1: चुरोट बिडीको प्रयोग पश्चात आगो निभाऊ। ठुटा जथाभावी नफालौं। वन जंगल, पेट्रोल पम्प तथा ग्यास डिपोको वरिपरि सलाई, लाइटर तथा आगोको प्रयोग नगरौं।
0: घरमा मैनबत्ती, धूप र दियो बाल्दा विशेष सतर्कता अपनाऊ। नजिकैको दमकलको नम्बर अनिवार्य सेभ गरेर राखौं।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
3: आग ना लागी देवा जाए और आग लागे से चलाक रहा जाए। खाना बनाए के बाद आग, गैस चूल्हा, स्टोव और हीटर अच्छा से बंद करा जाए। सिलेंडर के रेगुलेटर, पाइप और चूल्हा से गैस लीक होता है कि नहीं होता है, एक ठीक से चेक जांच करा जाए। गैस के गंध आए पे उका व्यवस्था ना करा जाए। सलाई, लाइटर लकी बच्चन के पहुँच से दूर रखा जाए। लकड़ी जलाई की खाना बनाए के बाद पानी से छीटा मार के ओका बुझाई देवा जाए। सिगरेट, तंबाकू, चीलम बीड़ी ना पिया जाए। अगर पिया जाए तो ओका अच्छा से बुझाई देवा जाए। बिजली के तार, प्लग, स्विच और वायरिंग ठीक अवस्था में है कि नहीं है, चेक जांच करा जाए। घर बस्ती के नजीक के पोखरी, टैंकी और कोनो भी तरीका से पानी के जुगाड़ करा जाए। आग लागी और विपत से बचे के लिए चलाक बना जाए। हवा हुरी से होए वाला क्षति कम करे के लिए पहले तैयारी करा जाए और उकरे लिए सतर्कता अपनावा जाए। अनुरोधक लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय, राप्ती उपत्यका, देवखुरी, नेपाल।
4: चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बिना आफू खुसी प्रतिजैविक औषधिको सेवन नगरौं।
5: चिकित्सकले दिएको औषधि सेवन गर्दै गर्दा सन्चो भएको महसुस भए तापनि बीचैमा नछोडी मात्रा अनुसार औषधि पूरै सेवन गरौं।
4: पछिका लागि भनेर औषधि बचाएर नराखौं।
5: अनावश्यक रूपमा प्रतिजैविक औषधिको सिफारिस नगरौं।
4: बिरामीलाई औषधि सेवन गर्ने विधि र अवधिको बारेमा राम्रोसँग परामर्श दिउँ।
5: चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बिना प्रतिजैविक औषधिको बिक्री वितरण कसैले नगरौं।
4: प्रतिजैविक प्रतिरोध रोकथामको लागि हामी सबै जिम्मेवार बनौं।
6: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।
7: ओहो भाइ, कुखुरालाई दाना हाल्दै हुनुहुँदो रहेछ त।
8: हो दाइ, कुखुरालाई रोग नलागोस् भनेर यो औषधि पनि मिसाउँदैछु।
7: खै के औषधि रहेछ? ला, यो त प्रतिजैविक औषधि यानि कि एन्टिबायोटिक्स पो रहेछ। रोग नलागोस् भनेर जथाभावी यस्ता एन्टिबायोटिक्स औषधि खुवाउनुहुन्छ त?
9: यसरी स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि खुवाएका पशु पन्छीको मासु खाँदा मानव शरीरलाई नै हानि पुर्याउँछ। यी औषधि त रोगको संक्रमण भएपछि मात्र दिने हो। यसरी जथाभावी एन्टिबायोटिक्स औषधि खुवाइएका पशु पन्छीका मासु खाँदा ती औषधिले बिस्तारै काम गर्न छोड्छन् र भोलिका दिनमा मानिसलाई कुनै पनि संक्रमण सन्चो नभएर अकालमै मृत्यु हुन्छ भाइ।
8: ठिक भन्नुभयो दाई, मेरा आँखा खोलिदिनु भयो। अबदेखि मेरा पशु पन्छीलाई पशु चिकित्सकको सल्लाह बिना यसरी जथाभावी औषधि खुवाउँदिन।
9: पशु चिकित्सक वा पशु स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र प्रतिजैविक औषधिको प्रयोग गरौं।
6: औषधि ऐन अनुसार प्रतिजैविक औषधिहरूको बिक्री वितरण भएको सुनिश्चितता गरौं। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।
10: कति धेरै भिड हो, मलाई यो सेतो छडी समातेर उभिन पनि गाह्रो भइसक्यो। ल, मलाई कसले छुँदैछ यताउता? आँखा भनि देख्दिन, कसलाई आरोप लगाउनु र? अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनेर हेप्न पाइन्छ? लौ न, सहयोग गर्नुहोस्।
11: ओए बहिनीलाई के गरेको हो? त मान्छे नै रहेनछस्।
12: सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिउ। अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध हामी सबै एक हौ।
13: डिसेबिलिटी राइट्स फण्डको आर्थिक सहयोगमा नेत्रहीन महिला संघ नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
14: यसो बिहे पार्टीमा हेर्यो सबैका बुढी झपक्क गहनामा सजिएर आउने। मेरी बुढीलाई पनि यसपालि एक सरो गहना बनाइदिनु पर्यो भनेको, कहाँ बनाइदिने होला?
15: तपाईँ बनाइदिन्छु त भन्नुहोस्, बनाउने ठाउँमा त म लैहाल्छु नि। गहनामा खास सधैँको विश्वास।
14: आकर्षक डिजाइनका भने जस्ता सोचे जस्ता गहनाहरूको एक मात्र विश्वसनीय स्थान भीम आभूषण गहना गृह,
16: तिलोत्तमा 5 मडगिराम रूपन्देही।
15: हजुर, हामी कहाँ आधुनिक तथा पुराना डिजाइनका सुन चाँदीका रेडीमेड गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार बिना रसायनका गहना निर्माण गरिन्छ। ए सुन्नुहोस् त, पुराना गहना सँगै नयाँ गहना साट्नुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ है।
17: सम्पर्क नम्बर 071-560-090, मोबाइल नम्बर 98-72-882 र 98-470-24-870।
18: सीसीटी कलेजको नयाँ भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। विगत 26 वर्षदेखि आईटी र व्यवस्थापन शिक्षामा अब्बल साबित हुँदै आएको यस क्षेत्रको पहिलो आईटी कलेजमा बीसीए, बीसीएस, आईटी, बीबीएमा सीमित सिटहरूको लागि नयाँ भर्ना खुल्यो। हाम्रा कार्यक्रमहरू बीबीए, बीसीए, बीसीएस, आईटी, बी फार्मेसी, बीएससी, एमएलसी, बीएससी नर्सिङ, बीपीएस, बीएनएच, एम फार्मा। विस्तृत जानकारीको लागि क्रिम्सन कलेज अफ टेक्नोलोजी, सीसीटी कलेज, बुटवल 11, देवीनगर। फोन 071-410-380, 071-410-479, मोबाइल 98-75-85-188, 98-75-20-752। www.cct.edu.np बाट पनि इन्ट्रान्स फारम भर्न सकिनेछ।
19: उत्सवको पर्व
20: एसआर इप्सन क्यानन ब्रान्डको 5 नम्बर प्रदेशको रिजनल अथोराइज डिस्ट्रिब्युटर,
19: टिसिएससी ग्रुप, कम्प्युटर सर्भिस सेन्टर,
20: कृषि विकास ब्याङ्कको गल्ली मिलन चौकदेखि 50 मिटर पूर्व आफ्नै भवनमा।
19: फोन नम्बर 071-542-6-559।
21: सौजी क्युआर भयो है?
22: ए, बगुनुस् त, मेसेज आएको छैन।
23: घरी एसएम

0: हजुर, नेपालमै उत्कृष्ट सुविधा सम्पन्न प्राकृतिक चिकित्सालय निभान हस्पिटल अब हाम्रै नयाँ मिलमा तिलोत्तमा चार नयाँ मिलमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न निभान हस्पिटल सञ्चालनमा आएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। निभान हस्पिटल नै किन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य परामर्श तथा बाह्य र आन्तरिक उपचारका लागि 100% प्राकृतिक र औषधि मुक्त उपचारका लागि अनुभवी चिकित्सक तथा थेरापिस्ट सेवाका लागि शान्त स्वच्छ र उपचार मैत्री वातावरणमा शरीर मन र आत्माको समग्र उपचारका लागि हजुर पूर्णत प्राकृतिक ढंगबाट उपचार हुने यस निवान हस्पिटलमा फिजियोथेरापी, जल उपचार, एक्युपंक्चर, योग, ध्यान, आहार, पोषण परामर्श सँगै क्रोमो तथा चुम्बक उपचार विधि, माटो उपचार, मालिस, धार्मिक थेरापी, उपवास थेरापी लगायत नसा च्यापिएको, एलर्जी, छाला रोग, प्यारालाइसिस, मुख बाँगिने, अनिद्रा, अपच, कब्जियत, माइग्रेन, डिप्रेसन, हात खुट्टा तथा घुँडा फोल्ने, हड्डी खिएको, महिनावारी तथा यौन गडबडी, युरिक एसिड, बाथ, बाजोपन, ग्यास्ट्रिक, थाइराइड, मोटोपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायत सबै खाले समस्याहरूको सही उपचार गरिन्छ। निवान हस्पिटल प्राली तुलोतमा चार नयाँ मिल रूपन्दै। सम्पर्क फोन 071592183, मोबाइल 98570068005, 97676, 091979। स्वास्थ्य र शान्तिको द्वार प्रकृतिसँग सिधै उपचार निवान हस्पिटल प्राली।
1: नमस्कार हो नमस्कार नाई, ई बुढ़ौती में बुढ़ा बुढ़ी का बात कही जाता। अका होई डॉक्टर नी बहनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल बाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। अहा ई होखे न तरीका सास ससुर के। हाँ तब का पेट में बच्चा रहले के बाद 2 वर्ष के जब तक नाई हो जाले ई 1000 दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कइल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
2: देखा पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन हो गईल, और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दत।
1: ठीक बात सुनल जाए रेडियो में लगातार बाजत बा।
3: गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
1: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
2: सब मिल के खियावल जाए,
1: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी, अंडा, मछरी, गोश, हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
2: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे उसे एक जवा बेची दिहल जाए, और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज उसे 2 जवा बेची देवल जाए।
1: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही, खास करके हाथ सफा रखा, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर धिका के पिए के चाही, बुझलू ने।
2: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
4: नमस्ते है नमस्ते, होइन बुढेसकालमा के कुरामा हो बुढा बुढी गफी तै
5: के हुनु नर्स नानी, जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी सासु सासुरको मेसो खोज्दै छौ क्या।
4: आहा यो नि तरिका सासु ससुराको हो त, पेटमा बच्चा बसेदेखि 2 वर्षको हुन्जेलसम्मका यी 1000 दिनमा आमा र बच्चालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने र सरसफाइका बारेमा ध्यान पुर्याउन सके आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ।
6: लौ ढुङ्गो खोज्दा देउतै मिले चाहिँ भयो, के गर्नुपर्छ भन्दिउँ त नानी।
4: ल यो सुन्नु त, रेडियोमा फुकेको फुकै हुन्छ त।
7: माछा मासु अन्डा मिठो सबैभन्दा, माछा मासु अन्डा मिठो सबैभन्दा,
8: अनि फलफुल र सागपात बच्चाको खाना साथ साथ
9: सबै मिलाइ खुवाऊ,
8: कम्तीमा 2 वर्षसम्म आमाको दुध पनि नछुटाऊ, बच्चा चलाक निरोगी बनाऊ।
9: हो मैले बच्चालाई निरोगी र चलाख बनाउनका लागि छ महिना पुरा भएपछि आमाको दुधको साथै अन्डा माछा मासु हरिया सागपात तथा पहेँला जातका फलफुल पनि खुवाए तपाईँले नि
10: साथै गर्भवती महिलालाई हरेक दिन सधैँ खाइरहेको भन्दा एक पटक थप र बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी आमालाई दुई पटक थप पोसिलो खाना खुवाऊ
11: हो यी सबै खानेकुरा तयार पार्ने र खुवाउने बेलामा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है खास गरी हात सफा राख्ने खानेकुरा राम्ररी धुने र पखाल्ने अनि पानी पनि सकेसम्म उमालेको प्रयोग गर्नुपर्छ बुझ्नु भयो नि आईडीई नेपाल बी ग्रुपको साझेदारीमा ग्लोबल न्यूट्रिशन परियोजना तथा कृष्णसार एफएम द्वारा सचेतनाका लागि जारी सन्देश
12: स्नातक तह भर्ना सम्बन्धी राममणी बहुमुखी क्याम्पसको सूचना रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित राममणी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा शैक्षिक सत्र 2083-84 लागि अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा भर्ना खुल्यो कार्यक्रमहरू बीबीएस बीएड र बीए भर्ना कार्यक्रम चलिरहेको छ कक्षा सञ्चालन साउन अन्तिम सातादेखि जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नतिजाको आधारमा छात्रवृत्ति र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई छात्रवृत्तिमा थप सहुलियत दिएर पढ्न पाउने व्यवस्था गर्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको क्याम्पस सम्पर्क राममणी बहुमुखी क्याम्पस तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही फोन 071-560-226 बीबीएस भर्नाको लागि 98-570-42-624 बीए र बीएड को लागि 98-471-29-657
13: स्वास्थ्यमा बटवल
14: बाल बालिकादेखि वृद्ध सम्मका स्वास्थ्यका कुरा
13: असल अभ्यासदेखि नीतिका कुरा
14: तपाईँको जिज्ञासा अनि सम्बन्धित निकायको जवाब
13: बुटवल उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा रेडियो लुम्बिनी एफएम 96.8 MHz
14: हरेक हप्ताको बुधबार र सोमबार बिहान 7:30 बजेबाट
13: कार्यक्रम स्वास्थ्यमा बुटवल
15: तिलोत्तमा नगरपालिकाको फोहर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्तै जरूरी सूचना फोहर मैला संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई दिगो र वैज्ञानिक बनाई वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको प्रमुख सूचकलाई कार्यान्वयन गर्न 2079 चैत्र 1 गतेबाट तिलोत्तमा नगरपालिकामा फोहर मैलाको स्रोतमै वर्गीकरण गरी कुहिने र नकुहिने फोहर अलग अलग रूपमा संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ साथै अबका दिनमा आफ्नो घर व्यावसायिक प्रतिष्ठान उद्योग धन्दा कल कारखाना होटल रेस्टुरेन्ट कार्यालय लगायत सम्बद्ध सबै स्थानमा कुहिने र नकुहिने फोहर राख्ने अलग अलग डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुहुन तथा डाइपर सेनेटरी प्याड तथा सिसाजन्य फोहरलाई छुट्टै झोलामा दिई सोही अनुरूप फोहर संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण नगरवासीमा अनुरोध छ तोकिए बमोजिमको कार्य नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र मिश्रित फोहर नगरपालिकाले संकलन नगर्ने कुरा पनि सम्पूर्ण नगरवासीमा जानकारी गराइन्छ
16: अनुरोधक तिलोत्तमा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मणिग्राम रूपन्देही
17: शान्तिको आवाज रेडियो लुम्बिनी